0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station.
6: That plays
7: foot tapping music.
8: Huzzah 97.1 FM.
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
10: You are listening 97.1 FM.

बात हो, लिखूं तेरी सदाएं, पढ़ूं सारी दुआएं, फिर भी तू रास ना आए, हम तेरे खास सताए, माना हम मर ना पाए, जी के भी कर ना पाए, तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼,
7: 97.1
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station that plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रासिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: लासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए, लासा ट्यूशन सेंटर, 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼,
7: 97.1
8: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
9: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
8: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: आंखों पर सजन।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

सबसे पहले डिस्कशन में ले आए, लेकिन आप जानते हैं मोटिवेशन कैसे लेके चलनी है। मोटिवेशन लेके चलने के लिए खुद बंदे का मोटिवेट होना बेहद जरूरी होता है। गुड मॉर्निंग नॉटिंगहम के प्रोग्राम में जब आपको मोटिवेशन मिलती है तो कहते हैं कामयाबी कामयाबी से नहीं मिलती, मोटिवेशन से मिलती है। मोटिवेशन देता हूं आपको मैं, लेकिन कामयाबी नाकामियों से बनती है बेसिकली। अब कहने का मकसद ये है, ये है हमारी कोट ऑफ द डे। इस पर अपने विचार, अपने विशेष, अपनी सोच, अपने ख्याल का इजहार करेंगे 0115 7100971 पे व्हाट्सएप मैसेज करके। आप इस पर लाइव कॉल भी कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नॉटिंगहम में। तो जनाब इस पर डिस्कशन भी साथ साथ रहेगी, आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कल के दिन के हवाले से क्या प्लानिंग है, कल के दिन के हवाले से क्या क्या प्लान किया था जो कम्प्लीट हुआ, कल के दिन के हवाले से क्या प्लानिंग है जो कम्प्लीट करनी है, और आज के दिन को लेकर आप कैसे साथ चलेंगे। बिल्कुल जनाब, गुड मॉर्निंग को मजीद खूबसूरत बनाएंगे, मुख्तलिफ ट्रैक हमारे साथ शामिल रहेंगे, आप लोग हमारे साथ शामिल रहेंगे, और जब तक ये सारी चीजें हमारे साथ रहेंगी गुड वाली मॉर्निंग और गुड हो जाएगी। और आप जानते हैं स्वस्थ और गुड मॉर्निंग को मजीद खूबसूरत आप लोग कैसे बनाते हैं, जब आप ट्यून करते हैं 97.1 FM या फिर डैप फजा के नाम से हमें सर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की खूबसूरत सी सवारी में सवार हो जाते हैं। ये गाड़ी रवाना होती है अपने मंजिल मकसूद की तरफ ठीक 10 बजे तक।

जी बिल्कुल ना, आप हल्के फुल्के ट्रैक्स तो एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके साथ आपका मिस्बान नासिर खान मौजूद है और ये ट्रैक्स एंजॉय करवाने का मतलब आपको ये है कि इतने खूबसूरत से मौसम में अगर आप ड्राइव करते हुए ये ट्रैक सुनेंगे, यानी जो इतना खूबसूरत सा मैशअप है, तो फिर डेफिनेटली माइंड और भी थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। और जो भी हमारे नॉटिंगम शहर के यूके के इंग्लैंड के जो भी हालात हैं, जिस तरह भी चल रहे हैं और जैसा हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, टेंशनें काफ़ी बढ़ी हुई हैं, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है। इसलिए आपकी टेंशन को समेटने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और सेग्रीगेट करने के लिए अलहदा अलहदा जो आपकी टेंशन है उनको बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। आपकी खिदमत में पेश पेश हैं खूबसूरत ट्रैक्स आपके मेज़बान आसर खान से आपके वन एंड ओनली शो गुड मॉर्निंग नॉटिंगम में।

जी बताए ना आप कौन है, कहाँ से हैं? जी 0115700971 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट आसिफ खान के साथ वन एंड ओनली शो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपका मेजबान आपका स्वागत करते हुए

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG2 4LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।

0: जीतो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो गुप्ता 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको फिर से गुश खुशामदीद कहते हुए स्वागतम स्वागतम स्वागतम ये स्वागत उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून कराइन 7.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे ऐप कैसे टाउन करेंगे आपको मैं बता दूंगा आपके टाउन नहीं बल्कि ट्यून करेंगे ऐप पे ट्यून करने के लिए जनाब आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे प्ले स्टोर पे वहां जाके लिखेंगे आप सर्च बार में रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल और एक खूबसूरत सा पर्पल करके बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में फजा लिखा आपके सामने आएगा आप उसको डाउनलोड करेंगे गेट करेंगे और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्वाद होगी नजर कहते हुए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम मजीद गुड बनाने के लिए आप ट्यून करते हैं 97.1 एफएम या फिर इस खूबसूरत से मौसम में और खूबसूरत बनाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे हुए कोस्टा या स्टारबक्स से जबरदस्त सी कैपेचिनो ऑर्डर करते हैं या फिर एक डबल एस्प्रेसो की शॉट मेरे लिए और बाकी सब कुछ आपके लिए फिर मजा आएगा प्रोग्राम का भी लेकिन इमेजिनेशन में आप उसको पी लीजिएगा क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूं आप मेरी आवाज सुनेंगे 97.1 एफएम के लाइव स्टेशन से एनीवे जनाब गपशप तो हमारे साथ साथ चलती रहेगी तंजो मुताबिक रहेगी और आपको पता है कि जनाब ये जो टॉपिक है ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट में एक टॉपिक होता है हमारी मोटिवेशन के हवाले से लाइफ जितनी भी इजी रहे उसको इजी समझना नहीं चाहिए ये कहते हैं सियाने अब मुझे ये नहीं पता कि सियाने जब मैं कहता हूं तो आप लोग मेरी तरफ क्यों देखते हैं लेकिन अगर देखते हैं तो अच्छा करते हैं सियाने कह के कहां जाते हैं इसका आज तक मुझे नहीं पता चला अगर आपको कोई खबर मिली मिकी भी लाजमी दसे नाल तो मैं उन्होंने लोगों भी दसना जेडे लोग नहीं समझने ना सियाने गुजर गए ये लभी के तमी बाए ना लभे तो फिर जितने भी हमारे कैबी हजरात हैं ट्रैक्स वो भी इंजॉय करते हैं और अगर आपने अपनी पैसेंजर सीट पे कोई खूबसूरत सा हम सफर बिठाया हुआ है अपनी लाइफ का पार्टनर तो फिर पहले उनको घर ड्रॉप करते हैं उसके बाद अपनी बाकी राइड कवर कीजिएगा ये आपके लिए इशारा है और जिनके लिए इशारा है उनका मैसेज मुझे आया मैंने पढ़ दिया है वो कह रहे हैं कि जनाब अपनी धर्मपत्नी को आप घर छोड़ आइए उसके बाद अपनी राइड कंप्लीट कीजिए नो प्रॉब्लम नॉटिंघम की सड़कें आपका इंतजार करें नॉटिंघम शायर आपका इंतजार करेगा हम वापस आएंगे डेफिनेटली 10 बजे तक लेकिन अगर आप उसके बाद भी मुझे सुनना चाहते हैं तो हमारे बाकी प्रोग्राम रहेंगे बाकी हमारे ट्रांसमिशन के हवाले से जानने के लिए आप 97.1 एफएम की किसी भी ऑफिशियल पेज पे जा सकते हैं सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूं लेकिन radiofsa.co.uk एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप जाएंगे तो आपको पेज मिलेगा बकरा मुबारक का जनाब बिल्कुल चांद रात का जबरदस्त इवेंट लिए जेड के इवेंट रेडियो 97.1 एफएम इस साल फर्स्ट टाइम अवार्ड लेकर आ रहे हैं आपके बड़ी ईद के मौका पर सबसे बड़ी जबरदस्त सी जो चांद रात सेलिब्रेशन होती है यूके की बिगेस्ट अगर आपको मैं रमजान की चांद रात याद करवाऊं तो आई थिंक हमारा जो कौन फॉल था वॉल 6800 फुट फॉल वाओ व्हाट अ फुट फॉल व्हाट अ स्टॉल एंड व्हाट अ शो क्या बात है ना जेट के इवेंट्स और रेडियो फजा की बहुत ही खूबसूरत सा शो और एंटरटेनमेंट का ये भरपूर धमाका लिए एक बार फिर से आपकी खिदमत में पेश होंगे 26 मई को मजीद मालूमात के लिए जनाब आप बुक कर सकते हैं अपने स्टॉल जितने मेरे बिजनेस होल्डर्स हैं अगर आप बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं इतने बड़े फुटबॉल के सामने तो आज ही रब्ता कीजिए जेड के इवेंट्स के ऑनर एंड रेडियो फजा के सीईओ ग्रेट जकी खान से नंबर आपके पास मौजूद है नहीं तो 0115-710-97 पे आप रब्ता करें और हम आपको बताएंगे या फिर radiofsa.co.uk पे जाएं बकरा मुबारक 2026 का आपको पेज नजर आएगा उस पर क्लिक करें और अपना फॉर्म बुक कीजिए स्टॉल बुक कीजिए शामिल हो जाइए हमारे साथ इस खूबसूरत सेलिब्रेशन में ताकि आपको मोटिवेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ पैसे कमाने का भी कुछ पाउंड कमाने का चस्का पड़ जाए एनीवे ये तो तंजो मजाक कपशप के साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी कर दी लेकिन अभी जो हमारा सेगमेंट है जनाब पर्सनैलिटी ऑफ द डे और आज जो हमारे साथ हमारी पर्सनैलिटी है बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है जनाब और इस पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड द ग्रेट बिल गेट्स बिल गेट्स की लाइफ कैसे शुरू हुई क्या जनाब उनकी जिंदगी में हर्डल्स थी क्या मुश्किल थी उन्होंने किस तरह उन मुश्किल को उन हर्डल्स को अपने ऊपर हावी ना होने दिया हर कुछ करने के बाद सब कुछ करने के बाद बिल गेट्स के पास क्या था और अब क्या है इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस मोटिवेशन सेगमेंट के उस पार रहिएगा मेरे साथ 97.1 एफएम ट्यून करने का बेहद शुक्रिया इस मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी के उस पार जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं एक और नासिर खान होऊंगा आप और लिसनर होंगे और हम अपनी जिंदगी को मजीद मोटिवेट करेंगे आज के दिन के हवाले से कि आज जो सुबह का हमारा पैगाम है मॉर्निंग का जो पैगाम है वो इतना जबरदस्त तरीके से हमारे जिस्मों में बिल्कुल ढल जाए हमारी रूह में उतर जाए ताकि हमें पता चले हमने आगे जाके करना क्या स्टे ट्यून एंजॉय द ग्रेट मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी ऑफ बिल गेट्स एंड योर होस्ट नासिर खान विल बी राइट बैक
1: Be Bill Gates was a shy and quiet boy who loved spending time in his room reading books for hours. And because he was small for his age, he was often bullied as a child. So he grew up as an introverted and antisocial kid. In high school, his original plan was to teach math, but that was until his friend Paul Allen convinced him to pursue a career in computer programming. So Bill Gates quickly took his advice and wrote his first computer program at the age of 13. But his parents were not happy. They had other plans for their child. They wanted him to pursue a law career. So to make his parents happy, he went to Harvard to study law. But he found himself spending more time on a computer than in class. And that was because he was really happy when he was coding. And on the other side, law was not something that excited him. So it was time for a bold move. He dropped out of Harvard University to pursue his dream and formed Microsoft with his childhood friend Paul Allen. But everything wasn't going perfect. At first, the company struggled financially. Some of their big clients went bankrupt. So Bill Gates faced many challenges and obstacles on his path to success. One of those challenges was Windows 1. Young Bill Gates predicted that after its release, Windows will be running on 90% of all computers, but he was wrong. Windows was received very poorly by critics, and only 10% of computers ended using it, and that was not even close to what Bill Gates was expecting. He was disappointed. It was a big setback, but also a stepping stone for Microsoft. After 2 years of hard work and long hours, Windows 2 was released. Big innovations were included. Microsoft Word and Excel were presented for the first time. So Windows became a huge commercial success and revolutionized the world. Finally, 90% of computers were using Windows. Bill Gates became a billionaire at the age of 31. And only 8 years later, he became the richest man in the world. And through the Bill and Melinda Gates Foundation, he has donated more than $45 billion. Bill Gates is one of the most successful people in the world. And there's a lot that can be learned from his success story. I'm not saying you should drop out of school and become the next Bill Gates. To be successful in life, you don't have to be a genius. Of course, that can't hurt. But whatever is important to you, do it with passion and have a vision. Whether it's a small business, getting a promotion, working from home, playing an instrument, sports, learning a new language, or even breaking records, like whatever, believe in yourself. And don't let failures discourage you. Even Bill Gates failed many times in his career. He couldn't predict everything, so he faced many obstacles and failures from the very beginning. Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose. He's extremely serious about the use of his time and hates the idea of wasting time. So stop procrastinating. Think about all the stupid, unnecessary things you're doing every day that keep you away from becoming great. And if you're suffering right now and you feel stuck and angry about where you are in your life, ask yourself one simple question and be honest. What ridiculous things have I been doing every day that are wasting my time and energy? Because if you really think about your daily habits, I bet you can find at least 5 things that you're doing right now that prevent you from pursuing your dreams. How many hours are you wasting every day? Think about it. How much closer could you get to achieving your goals if you only stopped wasting your time to meaningless and useless activities that give you momentarily happiness, but at the end of the day, actually make you unhappy? Plan your day ahead. Get up at the same time every day and organize your life. If you don't build your dreams, someone else will hire you to build theirs. So, what's your story?
2: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 7.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबाना है आपके साथ। बिल गेट्स कितने सक्सेसफुल हैं आज आपको पता चला, और मैं इतना क्यों कामयाब हूँ ये भी आपको पता है। जनाब गुड वाली मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग को मुझे स्वस्थ करने के लिए आपके साथ हूँ मैं। गुड मॉर्निंग नॉटिंगम के खूबसूरत सफर में वेलकम करता हूँ लोगों को जिन्होंने छोटे से सेगमेंट को ढेरों टेंशन और फोकस के साथ सुना, और उनको वेलकम करता हूँ जो नहीं सुन सके क्योंकि उन्होंने अभी 97.1 एफएम ट्यून किया। सभी ने जी वकार एंड डियर लिसनर्स ऑफ 97.1 एफएम, ये हैं जी बिल गेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे सेगमेंट पे मुझे लगी कि बिल गेट्स सुबह 6:30 बजे उठ जाते थे क्योंकि वेस्टिंग ऑफ टाइम इज अ हेल हेल हेल उनके लिए। लेकिन हम लोगों के लिए भी ऐसी, जो लोग अभी तक कंबल ओढ़े या कंफर्टर ओढ़े सो रहे हैं और इस ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे इस शहर में जनाब बिल्कुल भी इजाजत नहीं है आराम करने की। हमने दिन रात काम करना है, मेहनत करनी है, और अपने पीछे जो हम जितने भी साउथ एशियन कम्युनिटी है अपने पीछे हम काफी सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के आते हैं, उनको निभाना है। तो उठिए और स्वस्थ हो जाइए, गुड मॉर्निंग नॉटिंगम को गुड वाली मॉर्निंग कह के गले से अपने साथ लगाइए, बाजू खोल के ना हक कीजिए, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में उनको अपने आप से दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बिल गेट्स साहब से सीखी है, आप भी सीखेंगे डेफिनेटली, उसमें आपने ये करना है कि अपनी वेस्टिंग टाइम की जो हैबिट्स हैं उनको नोट करना शुरू करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो। एक घंटा, अगर आप कहते हैं ना घंटा आपने इंजॉय करना है, इंसान कहता है एक घंटा आप अपने आप को दें। कल एक साहब बड़े प्यारे हमारे व्यक्ति हैं, एक फयाज साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझे ये कह रहे थे कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया करें जनाब, थोड़ा सा रेस्ट किया करें, कोई इंटरटेनमेंट। मैं कह जी एंटरटेनमेंट लाइफ में कहाँ चलती है, हम साउथ एशियन कम्युनिटीज के जो लोग हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ अपने सर पर लिए, अपनी कंधों पर लिए इस मुल्क में आए, इस देश में आए, इस प्रदेश में, उस देश के प्रदेश में, उस प्रदेश के देश में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलती है वो हमें मिलती है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कैसे है। जिम्मेदारियां इंसान की वहां भी होते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए हम एक घंटा भी निकालेंगे ना तो बेहतर नहीं है कि भाई हम सो जाएं। आप क्या कहते हैं, आपके क्या विचार, आपकी क्या राय है, 01157100971 पे मैसेज कीजिए, बताइएगा मुझे। लेकिन एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक घंटा सोचते भी है ना कि रेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर ये भी आप वेस्ट कर रहे हैं। आजकल के दौर के हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए आपने क्या तैयार करना है, क्या बेस देनी है, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हम इसको पता रहना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें या इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखें, तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना कि बंदे का वेल एजुकेट होना जरूरी नहीं, वेल इन्फॉर्म्ड होना बेहद जरूरी है। सो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया 97.1 एफएम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑल ऑफ यू गाइज गुड मॉर्निंग नॉटिंगम, जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंगम। और जनाब ये खूबसूरत सब मोटिवेशन हमारे साथ चलती रहेगी कल नए सेगमेंट के साथ, फिर और भी मजबूत पर्सनैलिटीज होंगी। इन चीज़ों का मकसद सामीन बेसिकली ये होता है कि आप लोग अपनी लाइफ को किस तरह प्लान करते हैं, और प्लान करने के साथ साथ आपके पास जो मेन मोटिवेशन होती है, आपके पास जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों से कैसे शेयर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आईटी में बड़े माहिर होते हैं, आपसे गुजारिश है कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को दिन ब दिन बढ़ोतरी कैसे दे सकते हैं, कामयाबी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कुलिया है, बाबा नासिर खान आपको बता रहे हैं जनाब, बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट कुलिया वो ये है सामिन कि अपने आप को थोड़ा सा फोकस कीजिए। टाइम वेस्टिंग की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके एंटरटेनमेंट कर लेंगे, अपने आप को इंजॉय कर लेंगे, तो फिर आप अपनी एनर्जी लूज करेंगे। एनर्जी को लूज करने से बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है कि आपने लोगों को देखना है, लोग किस तरह आपके साथ चलेंगे, आपको कैसे फॉलो करेंगे, अपने आप को फॉलोअर्स में नहीं फॉलोइंग में लेके आना है। आपने ये देखना है कि आपको कौन फॉलो करे, आप जो फॉलो करेंगे ना किसी को, मैं कमर्शियल इश्यूज या सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी में हर इंसान का एक मेंटोर होता है, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, किसी ना किसी को लाइक जरूर करता है। तो अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी को लाइक करें जो कामयाब हो, तो फिर डेफिनेटली आप भी कामयाब होंगे, फिर आपके आगे बच्चे भी, आपकी नस्लें भी, ये सारी चीज़ें जनाब बतदरीज आपके साथ चलती रहेंगी और आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम, कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स मैंने वो निकाले हैं आपके लिए, आप इंजॉय कीजिए खूबसूरत से ट्रैक्स, क्योंकि ये सेगमेंट भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रहा था, 97.1 एफएम पे जो एंटरटेनमेंट है वो एक डिफरेंट है, उसको आप एंटरटेन करेंगे ड्राइव करते हुए, सुनिए खूबसूरत से ट्रैक्स, ट्रैक्स के उस पर रहती है आपसे मुलाकात, बल्कि हाइल होगी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पर जब मैं आपके पास वापस आऊँगा तो सेगमेंट होगा फ़िज़ा आइडिया का, और आज हम जो सेगमेंट में डिस्कस करेंगे वो सेगमेंट होगा कि जनाब आप ट्रैक्स ही नहीं
ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि सेगमेंट में क्या चीज है. स्टे ट्यून्ड, एंजॉय द टेक्स्ट एंड योर होस्ट नासिर खान विल बी राइट बैक. गुड मॉर्निंग नॉटिंघम.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: Better, the radio station for people who love music. 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान जनाब बिल्कुल आपके साथ एक बार फिर से मौजूद है और गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको स्वस्थ तरीके से वेलकम करने के लिए मैं हूं आपके साथ साथ। लेकिन खूबसूरत सा जबरदस्त सा हैक था हमारे पास, लॉट ऑफ स्टफ क्यों होता है, मेंटेलिटी क्या है, मुख्तलिफ हमारे डर्बी के लिस्टल यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ आपके हवाले से बताया, उन लोगों के हवाले से बताया कि माइंडसेट क्या होता है, हम इतना स्टफ क्यों कैलकुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम उसको किस तरह मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में। ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, चार दिन की जिंदगी है, कोफ से क्या फ़ायदा, इसलिए कोशिश है कि चार दिन का सामान अपने पास रखें। ये तो बात की थोड़ी सी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एनी वे आप लोग हमारे साथ रहेंगे इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए और बताने के लिए। आपने मेरा साथ देना 97.1 पे, जिन लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हो 115 7 0 9 7 1 पे आहिस्ता पढ़ू, आहिस्ता पढ़ता हूँ जी, 115 7 1 0 0 9 7 1। थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत हमारे साथ हैं। खूबसूरत सी फरमाइश हमारे पास आई है, बड़े प्यारे से हमारे से लिसनर भी हैं, हमारे आर्जी भी हैं, फियाज साहब ने बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश की जनाब, फरमाइश आपके लिए हाजिर है और खूबसूरत सा ट्रैक है जनाब, आपके नाम कहते हैं उडारियां, बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यारे पाजी सतेंद्र पाजी की आवाज में, सतेंद्र सरताज SS बेसिकली उनको कहा जाता है और हमारे एक बड़े खूबसूरत से पाजी हैं, वो भी ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं आपसे पहले कि वो फरमाइश करें, आपने भी फरमाइश की, इस फरमाइश के आगे फिर एक और फरमाइश है मेरे पास, वो भी सतेंद्र पाजी के ही गाने की फरमाइश है। क्या बात है, छाए हुए आजकल सोशल मीडिया पर जनाब, बिल्कुल खूबसूरत सा ट्रैक वो भी आपके सामने रखा जाएगा और कुछ और ट्रैक्स भी रखे जाएंगे, लेकिन वक्त मेरे पास सिर्फ आपके पास मेरे पास 10 मिनट रह चुके हैं, इंजॉय कीजिए खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक उस पर रहती है आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड एंड योर होस्ट नासिर खान विल बी राइट बैक आफ्टर द ट्रैक जस्ट टू से यू गुड बाय इन खूबसूरत प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनते पे हो अपने दिलानी आवाज,
7: फजा 97.1।

Assalamu alaikum, namaste, satyakar, and a very good morning to all my listeners who are listening me right now. तो लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा. वेलकम करती हूं आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग में. आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम, जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट. तो लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को हम लेकर चलेंगे साथ साथ अब से लेकर ठीक दो घंटे तक. यानी अब से लेकर ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार.

जी तो लिस्नर्स, इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो आप इस नंबर के जरिए से मुझसे अपने हालात, अपने जज्बात या फिर अपने गोल्स, प्लान्स, क्या आपके ज़िंदगी के गोल्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, क्या करने वाले हैं या फिर आप क्या करने का इरादा कर रही हैं, वो सभी बातें जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें रेडियो फजा .com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM इसको बआसानी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, सो उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने करना कुछ यूं है कि अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आपने जाना है एप्पल स्टोर, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं सो सिंपली जाना है आपने गूगल स्टोर। वहां जाकर सर्च बार में आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का आइकन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी रेडियो फजा 97.1 FM की एप्लीकेशन। सो जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए कि ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ और हमेशा आपको खबर मिलती रहे, यानी कि स्टे अपडेट। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी एप्लीकेशन को फौरी तौर पर इंस्टॉल कर लें।

तो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे। वैसे इस वक्त घड़ी पर जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रैवलिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर हम उनकी बात कर लें तो वो होंगे इस वक्त अपने स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल्स की, यानी कि महिला मित्र, तो वो लोग इस वक्त कर रही होंगी घर की क्लीनिंग, क्योंकि इट्स टाइम कि हम अपने घर को साफ कर लें, क्योंकि उसके बाद ही हम अपने दिन का बाकायदा तौर पर आगाज कर सकते हैं।

जी, तो जो जो भी लिसनर्स अभी इस वक्त हमें लाइव ट्यून कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें और अपने दिन का आगाज़ हमेशा पॉजिटिविटी से किया करें, क्योंकि जो हमारा डे होता है, डे का स्टार्ट होता है, वही इस चीज़ का तयन करता है कि बाकी का पूरा दिन हमारा कैसा जाने वाला है। सो मैं प्रेफर यही करती हूँ आप सभी से और उन तमाम तर लिसनर्स से जो लोग ये कहते हैं कि सुबह में हमें बहुत हैवी फील होता है या फिर हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप डे का स्टार्ट करें या फिर सुबह उठें, घर से बाहर जाना हो, आपको काम पर जाना हो या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कहीं पर भी जाना हो, सो आप अपने दिन का स्टार्ट करें एक अच्छी मील से। और एक अच्छी मील क्या होती है? एक हेल्दी और गुड ब्रेकफास्ट। और कहा जाता है ना कि अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे तभी आपका दिन अच्छा जाएगा।

मुझे लिसनर्स अपने दिन को खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट. सो सुबह उठकर सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि आप अच्छा ब्रेकफास्ट करें. आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका सुबह सुबह उठकर कुछ भी खाने को दिल नहीं करता. सो आप कुछ हैवी ना खाएं, लेकिन कुछ लाइट सा, कुछ हेल्दी, कुछ ऐसा ट्राई करें जो लाइट वेट हो लेकिन हो हेल्दी. क्योंकि जब आप अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे तभी आपको हेल्दी फील होगा, आपको एनर्जी मिलेगी. जब आपको एनर्जी मिलेगी तभी आपके अंदर एक लगन आएगी कि आज आपने घर से बाहर जाना है, अपने दिन का एक अच्छा स्टार्ट लेना है और बहुत सारे काम करने हैं. क्योंकि असल में होता यह है कि डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, हमें डेली बेसिस पर बहुत से काम काज करने पड़ते हैं, जिसके चलते चलते इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे और आप अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, अच्छा स्टार्ट नहीं लेंगे, तो किस तरह से आप अपना पूरा दिन अच्छा खुशगवार बना सकते हैं. और फिर वही होगा कि आपका मूड ऑफ होगा, चिड़चिड़ा फील होगा. और अगर आप ऐसे फील करेंगे तो आपका कोई भी काम, जो भी काम आप करेंगे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा.

चीज़ लिसनर्स शो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं, गपशप का भी और गुफ्तगु का सिलसिला जारी करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापसी पर शो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM। Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, maths and science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आई एम योर होस्ट सैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फजा 97.1 FM। तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा कोई भी शो बिना स्टार्ट ही नहीं होता कोट ऑफ द डे के। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल कोट जो कि दुनिया के मशहूर जमाना फिलोसोफर ने लिखा है, जिनको आप सभी भी आई थिंक जानते ही होंगे। आपका यानी कि उनका नाम मैं ज़रा लास्ट में मेंशन करूँगी, लेकिन जो उन्होंने कोट लिखा है, जो उन्होंने बात लिखी है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप इन हैंड्स है, अगर आप इस चीज़ को समझें। सो आप सभी से बिना देरी के आज का कोट ऑफ द डे शेयर करती हूँ ताकि हम आगे गपशप का सिलसिला बढ़ाएं। तो लिसनर, अ वेरी फेमस फिलोसोफर हलील जिब्रान की किताब से लिया गया है हमारा आज का कोट ऑफ द डे। हमारा आज का कोट ऑफ द डे कुछ यूं है कि योर सोल इज ऑफन टाइम्स अ बैटल फील्ड अपॉन विच योर रीजन एंड योर जजमेंट वेज वॉर अगेंस्ट योर पैशन एंड योर अपाइट। चलिए इस खूबसूरत सी बात को जरा गहराई से, जरा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो लिसनर्स, हमारा आज का कोट ऑफ द डे ये कहता है कि आपकी रूह अक्सर एक मैदान जंग किसी होती है जहां आपको रीजन और आपको फैसला, यानी कि आपको अपनी अकल और आपको अपने जज्बात दोनों ख्वाहिशात के खिलाफ लड़खड़ाते हैं। वो कहा जाता है ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड द बैलेंस। हम पूरा हफ्ता प्लानिंग करते हैं, डरते हैं और थक जाते हैं, लेकिन लिसनर्स, हमारी असलियत क्या है? असल सुकून, असल पीस इंसान को तभी मिलता है कि जब उसके दिल और दिमाग में एक बैलेंस हो। अगर आप हमेशा अपने दिमाग की सुनते रहेंगे तो दिमाग हमेशा आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ फोर्स करता है, धकेलता है, लेकिन उसके बरस अगर देखा जाए, अगर आप पूरा दिन या अपनी लाइफ में हमेशा अपने दिल की सुनेंगे तो दिल क्या करता है, दिल बहुत इमोशनल होता है, दिल हमेशा जज्बाती फैसले करता है, और उसके चलते चलते बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी भी होती हैं जिनके सरकमस्टांसेस हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिनके बारे में हम सब जानते होते हैं, हमें मालूम होता है, लेकिन स्टिल हमारा दिल कहता है कि क्यों ना हम इस चीज़ को कर लें, क्योंकि दिल बहुत इमोशनल होता है और इसी तरह दिमाग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो अगर हम दोनों में से किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा सुनेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो लिसनर, ज़रूरी किस चीज़ की है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमें इमोशंस की, फीलिंग्स की, इन सब की भी ज़रूरत होती है। सो अगर बिल्कुल ही दिमाग से सोचना शुरू कर दें, हर एक चीज़ में हम लॉजिक तलाश करें, हर एक चीज़ को लॉजिकली देखें, तो इंसान बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और फिर हर एक चीज़ उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नज़र आती है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसको हर चीज़ पे नेगेटिविटी नज़र आती है। लेकिन अगर इंसान बिल्कुल ही दिल से सोचना शुरू हो जाए तो वो क्या करेगा कि हर एक चीज़ को इमोशनली देखेगा। बाज़ औक़ात काम में, बिज़नेस में, स्कूल, कॉलेजेस, इन तमाम जगहों में हमारे इमोशंस नहीं चलते, चलता है तो हमारी लॉजिक और चलता है तो हमारा दिमाग।

तो लिसनर्स, हमारा आज का कोट ऑफ द डे बस इतना सा है कि ये कह रहा है कि हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर एक मैदानी जंग चल रही होती है जिसमें हमारा दिल, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, इसके साथ साथ हमारी अकल, हमारी रीज़न दोनों आपस में लड़खड़ा रही होती हैं। सो द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट थिंग क्या होती है और एक अच्छा इंसान क्या करता है, वो ये करता है कि वो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अपने माइंड की लॉजिक को भी कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है कि आप कभी भी जिंदगी में नाउम्मीद नहीं होते, मायूस नहीं होते। और वैसे भी कहा जाता है, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। हम सुकून ढूंढे निकलते हैं बाहर की दुनिया में, मेहनती चीज़ों में या लोगों की तारीफ में, लेकिन सच्चा सुकून हमेशा हमें अपने रब के जिक्र में और रब के शुक्र में मिलता है। सो बेसिकली द होल पॉइंट ऑफ द कोट ऑफ द डे इज़ कि आप अपने दिल को, दिमाग को संभाल कर रखें। अगर आपका दिल कह रहा है कि किसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए और आपका दिमाग ये कह रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है, सो रुक जाइए, संभल जाइए और अपने दिमाग की सुनिए। लेकिन बाज़ुकात जैसे कि हम फैमिली में होते हैं, हम अपने क्लोज वंस के साथ होते हैं, तो उस मोमेंट में हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्ते लॉजिक को नहीं मांगते, रिश्ते रीजनिंग को नहीं मांगते। अब अगर आप फैमिली गैदरिंग में हैं एंड देन देर इज़ अ पर्सन हु सडनली आस्क समथिंग, आपसे कुछ पूछ लेता है, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, बट स्टिल आप उसको पॉइंट आउट कर देते हो कि तुम्हारी बात का तो कोई लॉजिक नहीं, कोई रीज़न नहीं, तो आई एम श्योर उसको बुरा लगेगा। अगर कोई आपके साथ ऐसे करे तो आपको भी बुरा लगता है, एंड मुझसे भी करे तो मुझे भी बुरा लगता है। तो होल आपने उस मोमेंट में क्या करना है, अब भले आपको पता है कि इसकी बात का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल आपने अपने दिल की सुननी है और इमोशनली उसको रिस्पॉन्स करना है। उस एक मोमेंट में आपने अपने लॉजिक, अपने रीजंस को बीच में नहीं लेकर आना।

0: लोग किसी पर भरोसा तक नहीं कर सकते।
1: माफी मांगो इनसे।
0: मोहब्बत क्या करोगे?
1: अबरू कल रात मेरे नाम के साथ मंसूब हो गए।
2: जो काम मैंने शुरू किया था उसे खत्म भी मैं करूंगा।

0: Barbarossa perché mi ci bastava la tua vita di tanto, non ci sarebbe dunque tu niente che.
1: Tu non ci Barbarossa perché cosa ne
2: fai?
3: Can't
4: be happening
5: million years,
4: भूल जाओ उसे।
6: तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
7: चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी हाल में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
8: उसने जो किया है ना, उसकी कीमत हो चुकानी होगी उसे।
9: तुम दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफ है, लेकिन एक घर कभी

से। तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस ट्रैक को इंजॉय किया होगा। वैसे अगर बात की जाए तो ये ट्रैक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा थी, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि दीज आर द फेवरेट सॉन्ग दीज डेज। बट चूँकि इसके जो लिरिक्स हैं वो काफ़ी सिमिलैरिटी रखते हैं आई थिंक ईच पर्सन की लाइफ से, स्टोरी से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आजकल जो मेजॉरिटी है वो एक इसी फेस में गुजर रही होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉन्ग्स जो बने होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉन्ग्स होते हैं या तो वो लव स्टोरी से रिलेटेड होते हैं या फिर होते हैं ब्रेकअप से रिलेटेड। बट आई थिंक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स द फर्स्ट सॉन्ग जो कि इस चीज़ को कन्फेस कर रहा है, यानी कि अगर आप इसके लिरिक्स पर गौर करें तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो ये नहीं कह रहे कि आई ब्रेकअप से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, कोई गिला शिकवा नहीं हो रहा,

किसी भी किस्म का कुछ भी नहीं हो रहा, बट सिंपली जो ऑथर है यानी कि जो पोइट है वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि लाइक उसे इस चीज़ का डर है कि कहीं वो आपके टू मच क्लोज ना हो जाए और उसको आपसे प्यार हो जाए, एंड देन सडनली वो इस चीज़ से डर रहा है कि अगर उसको इस तरह की कोई फीलिंग्स आई और कन्फेस करने पर उससे उस तरह का रिस्पॉन्स ना मिला तो उसका दिल टूट जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ रियली ब्यूटिफुल सॉन्ग, होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। चलिए ज़रा चलते हैं अब किचन की जाने, काफ़ी गपशप तो हो गई। चलिए तो लिसनर्स, आज के किचन फैक्ट्री यानी कि किचन सेगमेंट के अंदर मैं उन तमाम तर फीमेल्स के लिए, स्पेशली उन तमाम तर लिसनर्स के लिए लाई हूँ कुछ ऐसा चटपटा सा, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि थ्रू द होल वीक हम बात कर रहे थे चिकन की यानी कि मीट की और मीट लवर्स की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़े उन लोगों के बारे में भी बात की जाए जो कि वेजिटेरियन हैं और उन्हें वेज पसंद है, तो उनके लिए भी तो मज़ेदार चटपटे ऑप्शंस होने चाहिए। सो आपकी इसी क्यूरी को मद्देनज़र रखते हुए आज लाई हूँ आपके लिए द किचन कुकिंग सेगमेंट में ऐसी रेसिपीज जो कि हैं टोटली वेजिटेरियन बट स्टिल आपको देंगी ऐसा टेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लाजवाब होगा, और रेसिपीज़ भी ऐसी जो कि बिल्कुल ईजिली झटपट फौरी तौर पर बन जाएंगी, यानी कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं चाहिए। जी तो मेरे तमाम तर लिसनर्स अपनी कॉपी पेंसिल रेडी कर ले, और अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो कोई डायरी उठा लीजिए, फौरी तौर पर नोट डाउन कर ले ताकि कोई भी इन्ग्रीडियंट सबसे मिस ना हो जाए।

जी तो लिसनर्स, आज की जो हमारी मेन कोर्स रेसिपी है, इट्स अ रेस्टोरेंट स्टाइल वेज कोल्हापुरी। अब नाम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है, सो आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली ये एक रिच और स्पाइसी वेजिटेबल कड़ी है जो वेस्टर्न इंडिया के शहर कोल्हापुर से मशहूर है और बिल्कुल 20 to 25 minutes में बन जाएगी, इसीलिए इसका नाम वेज कोल्हापुरी है। बेसिकली ये एक कड़ी है और ये वेजिटेरियन है टोटली। तो आज जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जो कि वेज हैं यानी कि वेजिटेरियन को पसंद करते हैं, उस उनके लिए तो आज का दिन काफ़ी बेस्ट होने जा रहा है। जी तो लिसनर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ। सो बेसिकली इसके लिए जो जो अज्जा हमें दरकार हैं, उसमें सबसे पहले मिक्स्ड वेजिटेबल्स 2 cup, जिनमें आप ले आलू, गाजर, मटर और फूल गोभी, बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए ये तमाम तर वेजीज, क्योंकि अगर आप वेजिटेबल्स को ज़रा बड़ा बड़ा पीसेस में कट करो तो वो फौरी तौर पर कुक नहीं होती, अच्छे से कुक नहीं होती, तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करती। सो आपने इनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। इसके साथ साथ हमें चाहिए प्याज 1 दरमियानी बिल्कुल बारीक कटी हुई, टमाटर 2 अदद, अब बारी आती है अदरक और लहसुन के पेस्ट की बिल्कुल 1 चम्मच। अब अगर बात की जाए कुकिंग ऑयल की तो इट्स अप टू यू, अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बासमती या फिर ऑलिव ऑयल। इनकेस अगर आपके पास, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बटर भी अच्छा ऑप्शन है। इसके चाहिए आपको 2 से 3 बड़े चम्मच और साथ ही आपको चाहिए कोल्हापुरी मसाला पेस्ट यानी कि 1 चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 साबित लाल मिर्च और 2 से 3 अदद लौंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तमाम मसाला जात यानी कि 1 चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 साबित लाल मिर्च और 2 से 3 लौंग, इन सभी को आपने कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह से भून कर बिल्कुल पीस के रख लेना है। अब अगर रेगुलर मसाला जात की बात की जाए तो इस रेसिपी में जो रेगुलर स्पाइसेस हैं यानी कि स्पाइसेस के बिना तो कोई भी रेसिपी, कोई भी खाना अधूरा है, क्योंकि अगर खाने में स्वाद चाहिए तो स्पाइसेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो हमें मसाला जात चाहिए उसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद नमक हसबे ज़रूर है। जी तो लिसनर्स, होप सो कि आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन इन केस अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है तो आप 0115710971 इस नंबर के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी को दूर करूंगी और साथ ही साथ आपको इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी मज़ेदार से टिप्स दूंगी। तो जी जी आप सभी के लिए एक बार फिर से इन इंग्रेडिएंट्स को मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आलू, गाजर, मटर, फूल गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई, उसके बाद हमें चाहिए प्याज 1 दरमियानी, टमाटर 2 अदद, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच और कुकिंग ऑयल 2 से 3 बड़े चम्मच। और फिर आ जाती है मसाले की यानी कि उस स्पेशल मसाले की जो इस कड़ी में जान डालेगा, उसके लिए आपको 1 चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 साबित लाल मिर्च और 3 से 4 लौंग, इन सभी को आपने क्या करना है, अच्छे से कुकिंग ऑयल में भून कर क्रश करके रख लेना है। और लास्ट पे आपको क्या चाहिए, रेगुलर मसाले जिसमें हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका। एंड आई थिंक अब तो सभी ने नोट कर लिए होंगे और किसी का भी कुछ मिस नहीं हुआ होगा। जी तो लिसनर्स, ज़रा चलते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। So let's take a short break and we will be right back after a very short break.

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। जी तो वो तमाम तर लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि आप हमें 01157100971 इस नंबर के जरिए से अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे शो में क्या चीज़ अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी कहना चाहते हैं सो आप इस नंबर के जरिए से हमसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और ड्यूरिंग ड्राइविंग आप हमारा शो फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। तो ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। तो लिसनर्स, अपने होने का एहसास हमें दिलाते रहिए, बताते रहिए कि आपको हमारा शो कैसा लगा। जी तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी से इंग्रेडिएंट्स शेयर कर दिए थे, अब जरा चलते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब कि किस तरह से हमने इस मज़ेदार सी वेजिटेरियन कड़ी बनानी है। सो इसके लिए सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपको परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट अरोमा मिलेगा। सो कुछ भी मिस आउट नहीं करना, इसको बिल्कुल इसी तरह से ही आपने कुक करना है। सबसे पहले आपने एक पैन में थोड़ा सा पानी डालकर सब्जियों को 70% तक स्टीम या फिर बॉईल कर लेना है, 70% तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाएंगी। अब स्टेप नंबर 2 की बारी आती है, यानी कि मसाला तैयार करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी एक पैन ले लेना है, पैन में अपने ऑयल को गर्म करना है, वो जो प्याज जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था एक अदद, उसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, ब्राउन करके पका लेना है। उसके बाद आपने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर का पेस्ट ये शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है यहाँ तक कि ये अच्छे से पक जाए, जो उसमें कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और आपको फील आए कि आपका जो टमाटर है और जो आपका ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में आपने ऐड करनी है अपने तमाम तर स्पाइसेस जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताए थे। अब आपने क्या करना है कि वो जो आपका रेगुलर मसाला था और उसके बाद वो जो कोल्हापुरी मसाला पेस्ट था, इन्हीं को बीच में शामिल कर देना है। मसाले को तब तक भूनें जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। अब आपने क्या करना है, इस मसाले के अंदर अपनी तमाम तर वेजीज को ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आधा कप पानी शामिल करें और हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। द अरोमा ऑफ स्पाइसेस विल फिल योर किचन। इसके साथ ही आप महसूस करेंगे कि आपके किचन में आपके इर्द गिर्द अच्छी खूबसूरत खुशबू फैल रही है और 5 से 6 मिनट इसको पकाने के बाद आपकी ये फेमस वेजिटेरियन कड़ी हो गई तैयार। देखा कितनी सिंपल सी थी, कितनी बेसिक सी थी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था और ना ही कोई हैवी चौड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट थी। बस अब आप इसे पका लें और फिर इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ नोश फरमाएं और साथ ही साथ आप इसको खा सकते हैं क्रैकर्स के साथ। क्रैकर्स के अलावा आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। इट्स टोटली वर्थ इट एंड इट्स टोटली अमेजिंग। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ चलता है एक अदद म्यूजिकल ब्रेक का। सो सुनते हैं ये मज़ेदार सा खूबसूरत सा ट्रैक, काफ़ी इमोशनल है बट स्टिल आप सभी को अच्छा लगेगा और इस म्यूजिकल ट्रैक के उस पार फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।

प्रिय तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस ट्रैक को बहुत इंजॉय किया होगा। पर्सनली काफी इमोशनल तो था आई थिंक, लेकिन काफी अच्छा भी था। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ, तो इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है। बट स्टिल होता है ना कि सम डेज कोई भी इंसान है, दे फील वेरी लो। सो आप समझ लें कि आज आई एम फीलिंग वेरी लो, सो मुझे ऐसे इमोशनल गाने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद ये तमाम तरह गाने मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं या मेरी ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो उसके चलते हुए मैंने ये सॉन्ग्स प्ले किए। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई फेवरेट सॉन्ग सिलेक्शन है या आप चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा ट्रैक भी शो में शामिल किया जाए, सो आप मुझे 01157100971 इस नंबर के ज़रिए से बता सकते हैं। आपकी राय का भरपूर ख्याल रखा जाएगा और मैं शो में वही सॉन्ग्स प्ले करूँगी जो आपको सुनने हैं।

प्रिय लिसनर्स, चलिए चलते हैं आज की सेकंड रेसिपी की जानिब। तो आज इसकी जो हमारी सेकंड रेसिपी है ये है फ्रेग्रेंट सीरा पुलाव। सो अगर आप चाहें तो आप इस कड़ी को इन राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, अगर चाहें तो क्रैकर्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट दोनों ही सूरत में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगेगा। सो चलते हैं ज़रा इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की जानिब। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए बासमती राइस 2 कप, उनको आप 20-30 मिनट्स के लिए पानी में भिगोकर रख दें। साथ ही साथ हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा। अगर बात की जाए घी की तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं या फिर बासमती घी, लेकिन बटर भी बेस्ट ऑप्शन है। सो आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। अब जरा मसाला जात की बात की जाए तो बेसिकली जीरा राइस हमेशा ही प्लेन होते हैं, इसमें ऐसा कोई भी स्पाइसेस नहीं होते। बस इस पे आपने 2 अदद लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है, जो क्या करेंगे इन चावलों के टेस्ट को, अरोमा को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नमक हद से ज़रूरत आपने इन चावलों में यूज़ करना है।

अब जरा प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पैन में घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने जीरा, खड़े मसाले, जात और इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आपने 30 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा ये है कि आपने जो भिगोए हुए चावल जिनको आपने रखा हुआ था उनको बीच में डाल दें, हल्का सा भून लें। अच्छा, आप जितने चावल यूज़ करेंगे तो जब आपने इसको दमा लगाना है तो उस हिसाब से आपने पानी यूज़ करना है। जैसे कि अगर आप 2 कप चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके लिए 4 कप पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि चावल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब करते हैं। सो अगर 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी, लेकिन अगर आपके चावल 4 कप हैं तो आपने ऑटोमेटिकली 8 कप पानी कर देना है। यह आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेना है।

सी द लिसनर, जैसा कि अभी बात हो रही थी फीडबैक की, तो अभी मुझे देयर इज समवन हु सेड कि आप शो में कोई सॉन्ग प्ले करें. सो चलते हैं और प्ले करते हैं कोई अच्छा सा सॉन्ग, ताकि उनकी सजेशन को यानी कि उनकी रिकमेंडेशन को पूरा किया जाए, उनकी विश को पूरा किया जाए. सो सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर से गपशप का सिलसिला जारी करेंगे. तब तक के लिए आप रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैप के संग जुड़े रहें.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी, वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो टीवा डायलॉग वेब रेडियो फजा 97.1 FM। रेडियो फजा 97.1 FM जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सो द लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलते हुए मुझे और आपको हो चुके हैं तकरीबन पौने दो घंटे, यानी कि बस अब थोड़ी ही देर रह गई है हमें और आपको साथ में। तो एक बार फिर से उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें बाद में ट्यून किया था, आज का कोट ऑफ द डे रिपीट कर देती हूँ। सो बेसिकली हमारा आज का कोट ऑफ द डे ये कहता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर बेसिकली एक जस्तजु, एक हलचल और एक मुसलसल जंग चल रही होती है किस चीज़ को लेकर, कि उसके जज्बात, उसके इमोशंस क्या हैं और उसकी अकल और उसकी लॉजिक क्या है। और अक्लमंद इंसान हमेशा वही होता है, यानी कि अ सक्सेसफुल मैन इज द वन हु बैलेंस इन योर फीलिंग्स एंड इन हर लॉजिक। अगर आप अपने दिल की ही सुनना शुरू कर दें, यानी कि तमाम तर फैसले अपने दिल से करना शुरू कर दें, तब भी लाइफ नहीं चल पाएगी। ऑब्वियसली लाइफ रुक जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, वहां हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपने जज्बात को बीच में नहीं लेकर आ सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर हम हर एक चीज़ को ही लॉजिक से सोचना शुरू कर दें, तब भी ज़िंदगी नहीं चल सकती, क्योंकि बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पर हमें इमोशंस की, हमें फीलिंग्स की भी ज़रूरत होती है। वेल, ये था हमारा आज का कोट ऑफ द डे। सो मैंने सोचा कि उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें लेट ट्यून किया था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। होप सो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड देन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे। और जब भी आप नेक्स्ट आप लाइफ में कोई डिसीजन लेने लगेंगे या फिर आप कुछ सोच रहे होंगे, किसी चीज़ का प्लान कर रहे होंगे, तो सडनली ये चीज़ आपके माइंड में आएगी कि आपने क्या करना है, बैलेंस करना है अपनी लॉजिक, अपनी रीजनिंग में और साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस में।

जी तो लिसनर्स, क्या आप सभी ने भी ये एक चीज़ नोट की है जो मैं नोट कर रही हूँ कि आजकल वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे कि फॉर मी, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सो आजकल यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है और आप रिलेट कर रहे हैं तो अभी 01157100971 इस नंबर पर जाकर मुझे बताइए कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको टैकल कर रहे हैं।

एक और ब्यूटी टिप आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपके फेस पर बाज़ों का बहुत ज़्यादा पफिनेस और डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो हमारी आज की जो दोनों टिप्स हैं वो आपकी इसी पफिनेस को, इसी डार्क सर्कल्स को रिमूव करेंगी। तो इसके लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सबसे पहले कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच और योगर्ट 1 चम्मच। सो ये 2 सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मेथड की तरफ अगर चलें तो देखें, तो आपने क्या करना है कि कॉफ़ी और दही को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है, और फिर उसको अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर, इवन के हाथों और पैरों पर भी आप इसको लगाएं, लगा कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और 10 से 15 मिनट्स के बाद आप अच्छी तरह से फेस का मसाज करें, इवन के अपने हाथों का, अपने पैरों का, और इसको एज अ मसाज करते करते अपने बॉडी से रिमूव कर दें। एंड यू विल सी कि जब आप इसको वीक में 2 to 3 times अप्लाई करेंगे तो आपको फौरी तौर पर रिजल्ट नज़र आएगा।

जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मजेदार सी ऑर्गेनिक ब्यूटी टिप्स। होप सो आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। लिसनर्स, टिप्स का मजा तभी आता है जब आप उन्हें मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। बाज़ों का क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो वीक में एक दिन यूज़ कर लेते हैं एंड नेक्स्ट होल वीक उसको इग्नोर कर देते हैं, एंड स्टिल फिर नेक्स्ट वीक आता है आप एक बार उसको अप्लाई कर लेते हैं और फिर होल वीक आप उसको छोड़ देते हैं। सो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा और ना ही दिखेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो कुछ इसी तरह से आपकी जो फेस जर्नी है, आपकी जो ब्यूटी जर्नी है, इसमें भी कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो ब्यूटी इज नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज अ लाइट इन द हार्ट। ब्यूटी सिर्फ आपका चेहरा नहीं होता, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी होती है। इट डजेंट मैटर कि इफ यू लुक गुड, इफ यू वेयर प्रिटी गुड क्लॉथ्स, बट इफ यू डोंट स्पीक गुड, इफ योर बिहेवियर इज नॉट गुड, सो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपनी तमाम तर फीमेल लिसनर से यही कहूँगी कि कोशिश करें कि आप अपने चेहरे के साथ साथ अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी ज़रा संवारिए, ताकि जब लोग आपसे बात करें तो आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से वो लोग इतना इंस्पायर होंगे कि उनको आपकी ज़ाहरी ब्यूटी के साथ साथ अंदरूनी ब्यूटी भी दिखे। सो इसी के साथ साथ ब्यूटी सेगमेंट का करते हैं एंड और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानेब। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक म्यूज़िकल ट्रैक, क्योंकि बिना म्यूज़िकल ट्रैक के तो हमारा शो चल नहीं सकता। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे लिसनर्स मेरी बातें एक साथ सुनते सुनते बोर हो जाएं। सो सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक के उस पार आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए

जी तो लिसनर्स, वेलकम बैक एक बार फिर से। मैं हूँ आपके होस्ट ज़ैनब फातिमा। वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग में। जी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस म्यूजिकल ट्रैक को एंजॉय किया होगा। पर्सनली मुझे इस तरह के सॉफ्ट स्पोकन इमोशनल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने आप सभी को इस चीज़ की एडवाइस दी है कि आप इमोशनली ज़्यादा मत सोचें, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचें। बट नहीं, सिंपली ये कि आप अपनी चीज़ों में थोड़ा बैलेंस रखें कि आप जो सोच रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं या फिर जो करने का इरादा है, इन दोनों चीज़ों के अंदर आपका एक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि कभी आप दिमाग की सुने तो कभी आप अपने दिल की, दोनों में से अगर एक चीज़ की ज़्याती हो जाएगी तो वो फिर आपका मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और वो फैसले कभी भी कामयाब नहीं होते जो टोटली लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, वो भी डिसीजंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं आपके इमोशंस पर, आपके फीलिंग्स पर, क्योंकि ज़िंदगी इमोशन से नहीं, फीलिंग से नहीं चलती। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लॉजिक की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी के साथ ही लिसनर्स, कुछ ये कहूँगी कि बी अ रीज़न दैट समवन स्माइल टुडे। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने से जुड़े उन तमाम तर लोगों की, जिनकी ज़िंदगी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं लिंक्ड है, उन तमाम तर लोगों के लिए कोई ना कोई एक ऐसा काम करके जाएं कि वो आपकी वजह से स्माइल करें, खुश रहें, आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर बाज़ूकात ऐसा होता है कि जैसे कि क्लोज वंस, फ्रेंड्स, फैमिलीज, आपस में कोई ना कोई बहस हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सो उस चीज़ को बिल्कुल भी बीच में मत आने दें और उन चीज़ों को साइड पे कर लें ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी को फैला सके। इसी के साथ ही हमारे शो द टीवा डायलॉग का वक्त भी हुआ जाता है ख़त्म। तब तक के लिए इतना कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखिएगा और दिन अभी आपका बाकी है। अभी हमारे शो का वक्त सिर्फ ख़त्म हुआ है, आपका दिन अभी बाकी है। जाते जाते इतना कहूँगी कि जाते जाते इतना कहूँगी कि आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और आपको डेली अपडेट्स मिल सकती हैं। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने दिन को मज़ीद खूबसूरत, यादगार बनाएं, तो आप फजा टैब के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर Nottingham Ofsted रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर, 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You're listening 97.1 FM.
12: You are playing Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.
5: You are saying, we are playing Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनते पे हो, सुनते पे हो अपनी दिलानी आवाज, दिलानी आवाज
7: 97.1।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

याद रखें, लोगों की आवाज़ें कम और अपने दिल की आवाज़ ज़्यादा सुने, क्योंकि जो शख्स खुद को पा लेता है वो कभी कुछ नहीं खोता। सुनते रहिए रेडियो फजा FM 97.1, एहसासात की असल पहचान।

आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, अपनी राय से इजहार कीजिए 0115710971 पे, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल एसएमएस कीजिए अपने नाम के साथ, अपने पते के साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

0: commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच सिनेंटनडेल NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर, 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: जबरदस्त हिट्स,
17: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर,
18: फजान 97.1 FM,
19: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाए दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुन दे पे हो अपने दिलानी आवाज
7: 97.1
8: सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

ओरिजिनल वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं लौट के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान उस्मान खान। आप सुन रहे जनाब 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम, और इस ड्राइव टाइम में मेरा और आपका साथ जो है अब ज्यादा टाइम का नहीं रह चुका, जितना सा रह चुका है इसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं आप लोग अपना साथ देकर। तरीकेकार बहुत ही आसान सा है और वही पुराना है, जो लोग आज पहली बार मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं आपको बताते चले जनाब, करना आपने कुछ यूं है, अपने मोबाइल का डायल पैड ओपन कीजिए, नंबर बताता हूँ उसको नोट करिएगा, द नंबर इज 0115710097। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115710097। इस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पर जाइएगा और अपना खूबसूरत सा पैगाम मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। कोई भी पसंदीदा गजल, नज़्म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। हवा के दुश्मन लहराता, गुनगुनाता, सनसनाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो आर यू वेटिंग, जल्दी से कीजिए मैसेज। जब तक आप करते हैं मैसेज तक तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप तक रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुँच पा रही तो जनाब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बल्कि आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन सकते हैं। उसके लिए आपने गूगल पर जाना है और वहाँ पर जाकर लिखना है radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को क्लिक कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को प्रमोट करने में रेडियो फजा आपका साथ दे, तो सिंपल सा तरीका है, आप हमारी इसी वेबसाइट पर एक अदद खूबसूरत सा मैसेज छोड़ दीजिएगा। आपका मैसेज हमारी मार्केटिंग टीम तक पहुंचेगा तो वो खुद आपसे रब्ता कर लेंगे। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है और इसका नाम भी बहुत आसान सा है, रेडियो फजा 97.1 FM। इसको खूबसूरत सी एक पर्पल कलर की एप्लीकेशन आपको मिलेगी गोल्डन माइक के साथ, उसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह बा आसानी मुझे या फिर हमारे तमाम आर्चर्स के तमाम प्रोग्राम्स को सुन लीजिएगा। हाँ, आप जब भी जहां भी सुनना चाहें आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। अगर इसके अलावा आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर भी मुझे ट्यून कर सकते हैं। फिलहाल एक खूबसूरत सी आवाज, आप सभी खूबसूरत सी समातों की नजर तेरे नाल नाल, मैडम नूर जहान, सिद्धू मूसे वाला और बोहेमिया को तीनों की आवाजों को मिलाकर ये खूबसूरत सी आवाज आपकी समातों से टकराने वाली है। इस आवाज के पार होगी आपसे फिर से मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम ड्राइव

0: All right, once again, welcome back. आपने सुना तेरे नाल नाल में रहना और साथ में बोहेमिया भी थे और साथ में सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ भी आपने सुनी. उम्मीद है कि काफ़ी अरसे के बाद ये लगाई गई आवाज़ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी. अब हम चलेंगे ज़रा मजीद पंजाबी ट्रैक्स की जानिब, लेकिन बीच में एक छोटी सी भी कमर्शियल ब्रेक भी हाइल होने वाली है कुछ मिनट्स के बाद. सो मैं सोच रहा था कि आपके साथ कुछ अच्छी बातें भी कर ली जाएँ, कुछ थोड़ी सी बातें आपको ऐसी भी बताई जाएँ जिनसे आपकी ज़िंदगी अगर बेहतर है तो वो मज़ीद बेहतरीन बन जाए. अच्छा, एक बात बड़ी आम सी है कि हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किल परेशानियां तो आती ही रहती हैं और कुछ लोग होते हैं जो उन मुश्किल परेशानियों को आसानी से हज़्म कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं. लेकिन मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कैसे नज़र आते हैं. ये लोग तभी नज़र आ सकते हैं जब आप पर मुश्किल वक्त आता है. हाँ, ये और बात होती है कि मुश्किल वक्त में लोग कम ही दूसरों की तरफ तवज्जो देते हैं. उनकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो मुश्किल ही होती है कि बस किसी तरीके से वो हल हो जाए. कम लोगों पर तवज्जो दी जाती है कि अपना कौन है, गैर कौन है. लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है, कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में दो ही हाथ हमेशा याद रह जाते हैं, एक वो जो मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ता है और एक वो जो मुश्किल वक्त में हाथ को छोड़ देता है. अब ये हम पे डिपेंड करता है कि जब हम पर मुश्किल आए तो हम उन लोगों को कैसे पहचाने, या फिर जब किसी दूसरे पे कोई मुश्किल वक्त आए तो हम किन लोगों में शामिल होते हैं, हाथ पकड़ने वालों में या हाथ छोड़ने वालों में. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी के मुश्किल वक्त में आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो आपके मुश्किल वक्त में वो आपको जरूर सपोर्ट करेगा. और फिर सामने जिंदगी भी तो एक बार मिलती है ना, सरासर गलत तस्वीर है. जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है. हमें यही लगता है कि जिंदगी एक ही दफा मिलनी है, इसको खोल कर जी लें. लेकिन यकीन करें कि हर एक लम्हा एक नई जिंदगी होता है. बार बार आपको दिन में 2400 घंटे ज़िंदगी मिलती है. हर एक नया लम्हा जो आपकी ज़िंदगी में आता है, हर एक नई चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आती है, वो ये साबित करती है कि आपकी एक नई ज़िंदगी मिली है. हाँ, मरना इंसान ने एक ही बार.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताज़ा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक, आ चुके हैं लड़के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.01 एफएम एंड ऐप। वो जनाब हम बात कर रहे थे इससे पहले कि ज़िंदगी जो है वो आपको हर लम्हे में मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ये बात कहते हैं या सोचते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, मेरा ख्याल है उनको आज अपने गलत फहमी को दुरुस्त कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी एक बार नहीं मिलती, बल्कि मरना इंसान एक बार होता है। ज़िंदगी तो हर लम्हे में मिलती है।

0: radio station for people who love music.
1: But on 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शाम

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Wake up to the true taste of the Middle East at Mariah Restaurant. Start your day with an authentic Arabic breakfast. Freshly baked za'atar bread topped with melting cheese, warm bread straight from the oven, creamy hummus, and freshly prepared falafel bursting with flavor. And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices. Whether it's breakfast, brunch, lunch, dinner, or takeaway, Mariah Restaurant delivers exceptional flavors with outstanding service every time. Opening time every day from 9:30 a.m. to 10:30 p.m. Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham, or order now on 0759315-0669. Mariah Restaurant, where every meal becomes a memorable moment.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are playing. Fazan 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा।
9: You are listening 97.1 FM.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाए दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: Zabardast hits.
5: Music never sounded better.
6: Fazan 97.1 FM.
5: I love it.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनते पे हो अपने दिलानी वाज, दिलानी वाज
7: 97.1।
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays
11: foot tapping music.
12: Hazar 97.1 FM.
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: इश्क विश्क प्यार।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
11: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
11: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
10: टेस्ट भी वाइब भी।
12: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Wake up to the true taste of the Middle East at Mariah Restaurant. Start your day with an authentic Arabic breakfast. Freshly baked za'atar bread topped with melting cheese, warm bread straight from the oven, creamy hummus, and freshly prepared falafel bursting with flavor. And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi. Slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices. Whether it's breakfast, brunch, lunch, dinner, or takeaway, Mariah Restaurant delivers exceptional flavors with outstanding service every time. Opening time every day from 9:30 a.m. to 10:30 p.m. Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham, or order now on 0759315-0669. Mariah Restaurant, where every meal becomes a memorable moment.
8: You are listening 97.1 FM.
9: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.
10: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा।
8: You are listening 97.1 FM.